0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉक ओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज

0: साथ मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस से बेस सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका

0: महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: Working to strengthen each other's
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
2: Areas with all of Europe.
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2

0: बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sanjay Mattu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
4: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली योर्स। गुड मॉर्निंग मुंबई, मैं हूँ आपका आरजी दोस्त रेहान। स्वागत करता हूँ आप सभी का। सुबह के 8:40 हो चुके हैं और कार्यक्रम मस्त मुंबई लेकर मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी मस्त ही होंगे। वीकेंड है और ऐसे में सैटरडे को ज़रा ऑफिस का काम भी थोड़ा हल्का होता है, ऐसे में मूड भी थोड़ा रिलैक्स होता है काम का जो बोझ होता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं हिंदी सिनेमा के कुछ ख़ास गीतों के साथ और कुछ चटपटी खबरों और गॉसिप्स को लेकर मैं हाजिर हूँ। और साथ ही साथ FM रेनबो है साथ, तो क्या गम है। चलिए शुरुआत करते हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम का।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है शनिवार 18 जुलाई और हर शनिवार की तरह आज बारी है हमारे खास कार्यक्रम दिल का फसाना की। तो दोस्तों फिल्मी दुनिया की चमक दमक देखकर अक्सर हमें लगता है कि सितारों की ज़िंदगी जो है बेहद आसान होती होगी। कैमरे की चमक, रेड कॉर्पेट और अवार्ड्स नाइट और करोड़ों चाहने वाले, लेकिन इन चमक के पीछे कितने अंधेरे रास्ते होते हैं, कितने ताने और कितनी नाकामियां छिपी होती हैं, साथ ही साथ कितने रिजेक्शन झेलने पड़ते होंगे, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की दो ऐसी अभिनेत्रियों की जिनकी कहानी सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और खुद पर यकीन करने की कहानी है। और सबसे खास बात यह है कि इन दोनों ही अभिनेत्रियों का

आज है जन्मदिन, तो चलिए इन दोनों को ही जन्मदिन की हार्दिक मुबारकबाद देते हुए अब सुनते हैं ये गीत। और आप तब तक व्हाट्सएप पे हमें बताइए कि आज किन दो प्रमुख अभिनेत्रियों का जन्मदिन है।

सुबह का 8:54 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और अभी आपने कुणाल गांजेवाला और साथियों को सुना कृष्ण में, और हमने सवाल पूछा था इस गाने के पहले कि आज किन दो प्रमुख अभिनेत्रियों का जन्मदिन है, तो अधिकतर हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने सही जवाब दिया है, भूमि पेडनेकर और प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा यानी कि देसी गर्ल, और भूमि पेडनेकर जिन्हें कंटेंट क्वीन आजकल कहा जाता है, इन दोनों का ही जन्मदिन है। और इसके साथ ही साथ सुखविंदर सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो इन तीनों ही सितारों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन श्रोताओं ने सही जवाब दिया है उनका नाम है चेतन कुमार, और इसके अलावा राम प्रजापति, प्रमोद चिंचोनकर और विजेंद्र अकोला से इन्होंने मैसेज किया, और आर्यन सोमवंशी जलगांव से, विनोद मकवाना दहिसर से, और दत्तात्रेय ने वेलापुर से मैसेज करके हमें सही जवाब दिया है। और हम प्रियंका चोपड़ा और भूमि पेडनेकर के संघर्ष और रिजेक्शन की बात करें, उससे पहले सुखविंदर सिंह की आवाज़ में ये गीत सुन लेते हैं फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर से।

सुखविंदर सिंह सपना अवस्थी और साथियों की आवाज़ों में ये दिल से फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। और मस्त मुंबई कार्यक्रम में कार्यक्रम चल रहा दिल का फसाना, और दिल के फसाने में आज हम बात करने जा रहे हैं अब देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने बरेली से निकलकर मिस वर्ल्ड का ताज पहना, बॉलीवुड में सभी का दिल जीता और इसके बाद हॉलीवुड में जाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और दूसरी एक्ट्रेस हैं भूमि पेडनेकर, जिन्होंने

उस दौर में हीरोइन बनने का सपना देखा जब इंडस्ट्री में सिर्फ तयशुदा खूबसूरती को ही स्वीकार किया जाता था, लेकिन भूमि ने यह साबित कर दिया कि अभिनय की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी साइज नहीं है, कोई भी चेहरा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका और भूमि दोनों ने ही शुरुआती दिनों में अपने लुक्स की वजह से लोगों के ताने झेले, फिल्मों में रिजेक्शन झेला, लेकिन

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

9:16 हो गए दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का फैम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकल योर्स, और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। दोस्तों, अगर हम बात प्रियंका चोपड़ा की करें, उनके संघर्ष की कहानी करें, तो उनकी कहानी किसी फिल्म में स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बरेली की एक साधारण सी लड़की जिसके माता पिता सेना में डॉक्टर थे और बचपन कई शहरों में बीता, अमेरिका में पढ़ाई की, वहाँ रंग भेद का सामना किया, स्कूल में ताने सहे, अकेलापन, लेकिन इन सब ने प्रियंका को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। शायद ये इसी का नतीजा था कि साल 2000 में प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता, और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने यह तय किया कि अब वो फिल्मों में अपना करियर बनाएंगी, और इसके बाद धीरे धीरे प्रियंका शोहरत की बुलंदी पर पहुँच गई। हालाँकि शुरू शुरू में उन्हें थोड़ा बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। ये गीत सुनते हैं और उसके बाद प्रियंका के सफर के किस्से और संघर्ष की गाथा को आगे बढ़ाएंगे।

उनसे शादी करोगी, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने एंजॉय किया सोनू निगम, उदित नारायण, सुनिधि चौहान और शादियों की आवाज़ों में। मिसोल्ड बनने के बाद भी प्रियंका चोपड़ा को फिल्मों में आसानी से काम नहीं मिला। कई लोगों ने कहा उनका चेहरा कैमरे के लिए फिट नहीं है, तो किसी ने कहा कि उनकी नाक अलग है, तो किसी ने कहा कि उनका लुक जो है पारंपरिक हीरोइन जैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी की बात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। सनी देओल की फिल्म द हीरो 2003 में उसके अपोजिट, सनी देओल के अपोजिट उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की और 2003 में ही फिल्म अंदाज रिलीज हुई और इस फिल्म में अक्षय कुमार उनके साथ थे, साथ ही में थे करीना कपूर भी और ये फिल्म कामयाब हुई और प्रियंका चोपड़ा की अदाकारी को लोगों ने पसंद भी किया। और उसके बाद आई फिल्म मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, कृष, कृष थ्री, डॉन जैसी सफल फिल्में प्रियंका चोपड़ा ने की और उसके बाद धीरे धीरे उनकी किस्मत जो है वो बदलती चली गई।

के अलीशा चिनॉय और साथियों की आवाज़ों में ये गीत फिल्म एतराज़ से आपने सुना। यूं तो हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्रियंका की ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ, लेकिन मधु भंडारकर की फिल्म फैशन में जब वो रिलीज़ हुई तो उसमें बेहतरीन एक्टिंग के लिए प्रियंका चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और एक बार फिर से अपने आप को साबित कर दिया कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ नंबर वन एक्ट्रेस भी हैं। सुनते हैं फैशन फिल्म का ये गीत।

फैशन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना 9:42 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। प्रियंका ने न सिर्फ ग्लैमरस फिल्में की बल्कि ऐसी फिल्में भी की जिसने ये साबित किया कि वो एक शानदार अभिनेत्री हैं। इनमें सात खून माप और बर्फी जैसी क्लासिक फिल्में भी शामिल हैं। प्रियंका ने इसके बाद वो कर दिखाया जिसका सपना बहुत कम भारतीय कलाकार देखते हैं। उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा, अंग्रेजी म्यूजिक एल्बम किए, इंटरनेशनल सीरीज की और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये भारतीय कलाकार किसी से कम नहीं है। सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है बल्कि वहां पर पहुंचकर अपनी जड़ों को याद रखना भी होता है। प्रियंका आज जब भी भारत आती हैं तो अक्सर कहती हैं कि उनकी पहचान उनके देश से है। शायद इसी वजह से करोड़ों लोग उन्हें एक अभिनेत्री नहीं बल्कि अपनी एक प्रेरणा के तौर पर, एक आदर्श के तौर पर याद करते हैं। ये खूबसूरत गीत प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बाजीराव से, हालांकि इस गीत में दीपिका पादुकोण भी उनके साथ हैं। सुनते हैं श्रेया घोषाल, वैशाली मढ़े की आवाज़ों में ये बहुत ही शानदार गीत।

बाजीराव मस्तानी का एक गीत अभी आपने सुना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकली योर्स और मैं हूं आपके साथ आपका आरजी दोस्त रेहान। 9:47 और अब बात करते हैं दूसरी खास शख्सियत यानी कि भूमि पेडनेकर की। एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड की खूबसूरती की परिभाषा जो है बदल दी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले भूमि बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम किया करती थी और वो रोज दूसरे कलाकारों के ऑडिशन लेती थी, लेकिन खुद कैमरे के सामने आने का सपना भी देखा करती थी और ये सपना पूरा हुआ उनकी फिल्म जब आई दम लगा के हाइशा। आइए सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में इसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

प्रियंका चोपड़ा और भूमि पेडनेकर की यात्रा बिल्कुल अलग है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता एक जैसा ही है। दोनों ने रिजेक्शन झेले, दोनों पर सवाल उठे, दोनों को कहा गया कि वो फिट नहीं है, लेकिन दोनों ने ही दुनिया से ये नहीं पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ, उन्होंने खुद से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ। और शायद यही सवाल इंसान की जिंदगी को बदल देता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है कि जब उसे लगता है कि अब शायद आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही दिन अगर हिम्मत से पार किया जाए तो जिंदगी सबसे बड़ी जीत में बदल जाती है। प्रियंका और भूमि पेडनेकर की कहानी हमें यही सिखाती है कि मंजिल प्रतिभा से नहीं, लगातार मेहनत और धैर्य से मिलती है। आज सोशल मीडिया का दौर है और हर दिन किसी के चेहरे, रंग, वजन या कपड़ों पर टिप्पणी होती रहती है, लेकिन याद रखिए, किसी इंसान की असली पहचान उसका चेहरा नहीं, उसका चरित्र, उसकी मेहनत, उसका व्यवहार होता है। और प्रियंका और भूमि ने दुनिया को यही संदेश दिया है। आज के दिल के फसाना में हमने जाना कि जिंदगी में रिजेक्शन अंत नहीं होता, बल्कि

अक्सर वही नई शुरुआत का पहला कदम होता है। अगर बरेली की एक लड़की पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकती है, अगर एक कास्टिंग असिस्टेंट बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में शामिल हो सकती है, तो यकीन मानिए आपका सपना भी पूरा हो सकता है। ज़रूरत है खुद पर भरोसा रखने की, मेहनत जारी रखने की और हर नाकामी को अपनी अगली सफलता की तैयारी समझने की। इसी उम्मीद के साथ आज के दिल के फसाना का सफर बस यहीं तक। अगले शनिवार फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ, एक नए फसाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी तो ये शुरुआत थी। 10 बजे आप सुनेंगे प्रमुख समाचार और उसके बाद भी FM रेनबो पर मनोरंजन का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनते हैं ये गीत मोनाली ठाकुर की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है प्रमुख समाचार। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत जापान के बीच चल रही बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल कहा कि जापान 2030 के दशक की शुरुआत में E20 ट्रेन श्रृंखला उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ परिचालन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांसीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिनवई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में IIT के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। डॉक्टर मिनवई कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर SJ से मुलाकात करेंगे। PV सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु चीन की विश्व नंबर 4 चेन यूफी के खिलाफ खेलते हुए दूसरे गेम में भी आगे थी, तभी चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबलों से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त रेहान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आज 18 जुलाई है और यह तारीख भारतीय सिनेमा और विश्व के इतिहास दोनों के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन अगर हम बात करें हिंदी सिनेमा की या सामाजिक क्षेत्र की, तो आज के दिन 2012 में हिंदी सिनेमा के पहले सुपर सितारे राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, तो वहीं आज ही के दिन दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक गिने जाने वाले नेल्सन मंडेला का जन्मदिन भी है। नमस्ते भारत के इस खास सेगमेंट में सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों में आप सभी का मैं आरजी रेहान स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस अभिनेता से जिसने स्टारडम का मतलब ही बदल दिया था।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपकी कसम से ये गाना अभी आपने सुना। हम बात जब भी राजेश खन्ना की करते हैं, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, तो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना का जो असली नाम है वो जतिन खन्ना था। और उन्होंने जो बचपन से ही उनके अंदर अभिनय की एक ललक थी, स्कूल और कॉलेज के मंचों पर वो नाटक किया करते थे और उनका सपना फिल्मों तक पहुंचने का था। और 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता और इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रखा और यही नाम आगे चलकर इतिहास बन गया। हालांकि शुरुआती दौर में जब उन्होंने ये प्रतियोगिता जीती तो जो प्रोड्यूसर्स थे वो थोड़ा सा हिचक रहे थे काम देने से, और कई फिल्में की उन्होंने जो सफल नहीं साबित हुई। लेकिन जब उन्होंने शक्ति सामंता के फिल्म आराधना की तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.

नमस्ते। भारत के इस खास मोड़ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपर सितारे राजेश खन्ना की। शक्ति सामंत की जब फिल्म आराधना रिलीज हुई और इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म का संगीत, कहानी और

राजेश खन्ना की मुस्कान, सब कुछ लोगों के सिर चढ़कर बोला। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय फिल्म इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते थे, वो राजेश खन्ना को देखने के लिए जाते थे। थिएटरों के बाहर लंबी लाइनें लगती थीं, हर घर में उनका नाम गूंजता था। यहीं से उन्हें मिला वो खिताब जो आज तक किसी दूसरे अभिनेता के साथ नहीं जुड़ पाया, वो था भारत का पहला सुपरस्टार।

दूर रास्ते फिल्म का यह गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का फिल्म रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। म्यूजिकली और 10:30 हो गए हैं और मैं हूं आपके साथ आपका आरजे दोस्त रेहान। बात हो रही है काका यानी कि राजेश खन्ना की। 15 लगातार फिल्में सुपरहिट और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। राजेश खन्ना की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने लगातार 15 से अधिक सुपरहिट फिल्में दी और फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि जब अमर प्रेम की शूटिंग हो रही थी और ये शूटिंग हावड़ा ब्रिज पर के नीचे नाव पर होने वाली थी और तब अथॉरिटी ने शूटिंग की परमिशन देने से इसलिए इनकार कर दिया था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए जब ब्रिज पर लोग आएंगे और इतनी भीड़ हो जाएगी कि उससे हावड़ा ब्रिज टूट सकता है, इसलिए जो प्रशासन है उसने शूटिंग की परमिशन देने से मना कर दिया था। और इसके अलावा जब कटी पटंग फिल्म की शूटिंग के लिए वो नैनीताल गए थे तो शूटिंग लोकेशन नैनी झील के आसपास था, इसलिए उस झील को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया गया था। और थिएटर में राजेश खन्ना को देखने लोग गए तो वो इस तरीके से पागल हुए कि उनकी टी शर्ट भी एक फैन ने फाड़ दी थी। तो उनकी लोकप्रियता का आलम जो था वो इस तरह का था कि किस तरह से हिंदी सिनेमा के पहले सुपर सितारे के प्रति लोगों की दीवानगी थी। आराधना, दो रास्ते, सफर, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आनंद, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, दुश्मन, मेरे जीवन साथी, हर शुक्रवार उनका नाम लिखा होता था बॉक्स ऑफिस पर। उनका संवाद, उनकी मुस्कान और आंखों से अभिनय करने की उनकी शैली उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। आज के दौर में जहां एक हिट फिल्म देना चुनौती है, वहीं वो उस दौर में लगातार 15 की 15 फिल्में सुपरहिट देते थे और अपने आप में ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के नाम है। किशोर कुमार की आवाज़ में और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं अब रोटी फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन 70 के दशक में लोगों का प्यार कुछ और ही था। राजेश खन्ना के लिए लड़कियां अपने खून से खत लिखा करती थीं, उनकी कार को चूमा करती थीं, जहां से उनकी कार गुजरती वहां भीड़ उमड़ पड़ती थी। कई बार उनकी सफ़ेद कार लिपस्टिक के निशानों से लाल हो जाती, और यह सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं थी, यह एक ऐसा जुनून था जो शायद भारतीय सिनेमा में फिर कभी देखने को नहीं मिला। बात अगर अभिनय की हो और राजेश खन्ना का जिक्र ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद में मौत से जूझते इंसान की जिंदगी जीने की कला और अमर प्रेम में टूटे हुए इंसान का दर्द, इन दोनों फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि राजेश खन्ना सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, बल्कि वो एक बेहतरीन अभिनेता भी थे। उनका मशहूर संवाद, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, आज भी उतना ही लोकप्रिय है।
1: मैंने

दस बजकर 45 मिनट और बाद जब राजेश खन्ना की होती है और किशोर कुमार का जिक्र ना हो, उनकी आवाज़ उनके साथ ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। किशोर दा की आवाज़ और राजेश खन्ना की अदाकारी ने मिलकर हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादगार गीत दिए। मेरे सपनों की रानी से लेकर ये शाम मस्तानी, चिंगारी कोई भड़के और जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, इन गीतों ने सिर्फ फिल्मों को नहीं बल्कि पीढ़ियों की यादों को अमर बना दिया। फिल्मों में सफलता के बाद राजेश खन्ना ने हालांकि राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हो पाए। जिंदगी के आखिरी वर्षों में वो बीमार रहने लगे और 18 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 2012 में जब उनके निधन की खबर आई तो पूरा देश शोक की लहर में डूब गया। उनके अंतिम शब्द थे, टाइम हो गया है, पैकअप।

जी हाँ दोस्तों, प्यार तो दिया ही होता है, लेकिन अगर हम बात राजेश खन्ना की करें तो एक ऐसी शख्सियत है जिस पर जितनी भी बात की जाए उतने ही घंटे कम पड़ते हैं। और आज 18 जुलाई को एक और सियासी शख्स हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, ये हैं नेल्सन मंडेला। जी हाँ, ये 27 साल जेल में रहे लेकिन फिर भी इनका हौसला नहीं टूटा। मंडेला ने पूरी दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश दिया और 18 जुलाई 1918 को जन्मे मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्हें 1993 में जो है नोबेल प्राइज मिला था शांति का, और संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला के सम्मान में 18 जुलाई यानी आज ही अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है। और इसी दिन दुनिया भर के लोगों से अपील की जाती है कि वो कम से कम 67 मिनट समाज की सेवा करें, और ये 67 मिनट मंडेला के उन 67 वर्षों का प्रतीक है जो उन्होंने मानवता, समानता और न्याय के लिए समर्पित किए। तो आज हम राजेश खन्ना के साथ साथ मंडेला जी को भी नमन करते हैं। तब एहसास होता है कि एक ने कला के जरिए दिल जीते और दूसरे ने इंसानियत के जरिए जो है दुनिया को जीता, और दोनों की ही विरासत जो है वो हमेशा के लिए अमर रहेगी। इसी के साथ ही मैं आपका आरजे दोस्त रेहान आपसे लेता हूं अब अनुमति। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM ब्रेनबो चैनल, और रखिए अपना ख्याल। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल. मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ, और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार. विक्रम एक की पहली परीक्षण उड़ान जो है वो शुरू हो चुकी है. भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है. इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एयरसो स्पेस ने बनाया है. यह रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा. विक्रम एक का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांचुक को अनशन के 21वें दिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद आज अस्पताल में भर्ती कराया गया. दिल्ली पुलिस के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे हल्की अफरा तफरी की स्थिति बनी. हालांकि पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से पूरा किया. कल मैक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया. मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइबानाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भूकंप के बाद किसी नुकसान की खबर नहीं है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के उपाय किए गए हैं और सुनामी के खतरे को देखते हुए लोगों को समुद्र तटों के निकट नहीं जाने की सलाह दी गई है. और समाचारों के अंत में, फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी. मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा. स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया. अर्जेंटीना से हार के बाद इंग्लैंड की टीम विश्व कप से बाहर हुई. इसी के साथ समाचारों का यह अंक समाप्त होता है.

म्यूजिकल ईयर्स, हाय हेलो सत श्री अकाल वणक्कम, मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है ब्रेक फ्री। 11 बजे का टाइम है और बहुत सुंदर सा मौसम है बाहर, क्यों ना इसमें एक जो है चाय का प्याला हो, साथ में किताबें हो। लेकिन इस वक्त के एक घंटे बाद यानी कि ये किताबें खुलेंगी 12 बजे। फिलहाल सीटी से जुड़े हुए गाने, सीटी से जुड़ी हुई बातें, वो लोग जो सीटियां बजाते हैं आज अपने आप को यहाँ महसूस कर सकते हैं एफएम रेनबो पर। और थॉट ऑफ टुडे कि किसी दिन जिंदगी में करिश्मा क्यों नहीं होता, कि किसी दिन जिंदगी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, मैं हूँ आरजे नमिता। ब्रेक फ्री प्रोग्राम चालू है और हम बात कर रहे हैं सीटियों पर। जी हाँ, वही सीटी जो कभी खुशी का इजहार करती है तो कभी शरारत का, कभी किसी धुन का सबसे प्यारा सा हिस्सा हो जाती हैं सीटियाँ। क्या आप जानते हैं कि सीटी बजाना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक कला भी है? जी हाँ, गलत जगह पे गलत इंसान के लिए बजाई जाए तो ये शरारत बहुत भारी भी पड़ जाती है। आज बात करेंगे सीटी के पीछे के विज्ञान, उसके फ़ायदे, और सुनेंगे बॉलीवुड के सबसे यादगार विसलिंग वाले सॉन्ग्स जो होते हैं उन्हें। लेकिन एक नाम ज़रूर, जब विसल्स की बात होती है तो लेना ज़रूरी है।

हॉलीवुड के नागेश सुर्वे जी, जो बहुत ही बखूबी अपना जो काम है वो करते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि कई सारी फिल्मों में इन्होंने सीटियां बजाई हैं, और 1975 से जो है ये बॉलीवुड में गानों में अपनी जो सीटियों की आवाज़ें हैं वो देते आ रहे हैं। 1600 से ज़्यादा जो है इन्होंने आइकनिक फिल्म्स में

म्यूजिकल योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ अर्जुन अमिता, आपके साथ सीटियों के इतिहास पर करेंगे बात। आप जानते हैं, इंसान लगभग 50,000 वर्षों से ज़्यादा सीटी जैसी ध्वनुएं का जो है वो उपयोग करते आ रहा है। संकेतों में बातें करते थे, ये तो हम सभी को पता है, पर सीटियों पे भी बातें करते थे। ये आज आपको मैं बता रही हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जो पूरी तरह से सीटी बजाकर ही बोली जाती है। ला गोमेरा स्पेन की एक भाषा है जो इस तरीके से बोली जाती है। रेलवे गार्ड हो, पुलिस हो, कोच हो, रेफरी की सीटी हो, आज भी संचार का सबसे पेचीदा या तेज माध्यम मानी जाती हैं ये सीटियाँ। कई म्यूजिक डायरेक्टर मानते हैं कि विस्लिंग किसी भी धुन का तुरंत उस वर्जन होता है और तुरंत यादगार बना देने की क्षमता रखती है। प्रसिद्ध संगीतकार आर डी बर्मन ने कई गीतों में सीटी का बेहद रचनात्मक रूप से प्रयोग किया है। हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो की एंट्री के लिए भी सीटी की धुन का खूब इस्तेमाल होता है, और इस गाने में भी उसी का इस्तेमाल है।

ब्रेक फ्री प्रोग्राम में सीटियों से छोटा सा विराम लेंगे. कुछ ही पलों में आप जो हैं सुनेंगे स्टम्पेट प्रोग्राम, जिसे हम दिल्ली से रिले करेंगे. और बने रहिए यहीं, क्योंकि 11:45 पर हम वापसी करेंगे और फिर और भी जानकारियां देंगे आपको सीटी के बारे में. बने रहिए FM रेनबो के साथ. कम

0: म्यूजिकल ईयर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आरजे नमिता, आपके साथ ब्रेक फ्री प्रोग्राम फिर से जारी हो चुका है और हम बात कर रहे थे सीटियों की। सीटियों के बजाने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन सीटी बजाते समय गहरी सांस लेनी पड़ती है जिससे शरीर रिलैक्स महसूस करता है और तनाव कम हो जाता है। अच्छा, तनाव कम करना है तो सबसे पहले ये वाला गाना सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आपको और फ़ायदे भी बताएंगे। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

तो भाई ऐसा ही होता है, ये मोहब्बतें फिल्म का गाना था और मोहब्बतें का जो टाइटल ट्रैक है उसमें बहुत ही खूबसूरती से सीटी जो है वो बजाई गई है, अगर आपने सुना होगा तो। फिलहाल सीटी बजाते हुए कई लोग आपको दिख जाते होंगे, जब हम गाने सुनते हैं खासतौर पर तो सीटियाँ बजाते हुए ही सुनते हैं, इससे मूड जो है ना वो बेहतर हो जाता है। अक्सर अनजाने में सीटी बजाने लगते हैं जो लोग, वो भूल जाते हैं कि उनके आसपास कोई और भी है। तो बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि किस जगह पर आप हैं और कैसी आवाज़ें आप निकाल रहे हैं, हो सकता है आपकी सीटी उतनी खूबसूरत भी ना हो तो बहुत सामने वाले को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। फिलहाल याददाश्त में भी मदद मिलती है इस सीटी से, धुनों को सीटी में दोहराने से दिमाग की संगीत पहचानने की जो क्षमता है वो सक्रिय होती है। चेहरे की मांसपेशियों की हल्की सी एक्सरसाइज होती है, होंठों और गले की मांसपेशियों की जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है। ध्यान रहे लेकिन कि बहुत तेज़ आवाज़ में या अनुचित जगह पर सीटी बजाना सामाजिक रूप से असुविधाजनक हो सकता है। सही समय और सही जगह पर सीटी एक खूबसूरत अभिव्यक्ति भी बन जाता है। और एक बात बताएं, फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो जाती है नियमित सीटी बजाने से, सांस लेने की क्षमता जो है वो बेहतर भी होती है। इसीलिए तो कई सारे जो एक्सरसाइजेज वाले होते हैं या योगा वाले लोग होते हैं वो इसको लाफ्टर क्लब वगैरह जो होते हैं वो भी उसे इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल बने रहिए हमारे साथ FM रेनबो पर। ये आखिरी वाला गाना जो कि सीटी बजा रहा है और अगले प्रोग्राम यानी कि म्यूजिक कैफे को बुला रहा है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. मैं हूं आरजे नमिता और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार. भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है. इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है. ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा. संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के सहयोग की अपील करेगी. वरिष्ठ राजनेता के अध्यक्ष शरद पवार ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांचुक के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैयों की आलोचना करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है. बारामती में आज संवाददाताओं से बातचीत में पवार ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर सरकार ने वांचुक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा. समाचारों के अंत में, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि क्रिकेट जगत ने अपने एक प्रतिभाशाली सितारे को खो दिया है. वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेट कप्तान और बहुआयामी प्रतिभा के धनी गौर सोबर्स का कल बारबाडोस में 79 की उम्र में निधन हो गया. इसी के साथ समाचारों का यह अंक समाप्त होता है.

तो दोस्तों, मैं हूँ आरजे नमिता, आप सुन रहे हैं म्यूज़िक कैफ़े एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और हम जो है आज बातचीत करने वाले हैं, म्यूज़िक कैफ़े में माहौल बनने वाला है, किताबें खुलने वाली हैं, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की बात होने वाली है। हम बात करने वाले हैं उपन्यासों की, वो उपन्यास जो आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं अगर आप भी खाली समय में बजाय कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ या कोई भी वेब सीरीज़ देखने की बजाय किताबों की दुनिया में जाते हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी बदलनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े हादसे की नहीं, कभी कभी सिर्फ एक अच्छी किताब की ज़रूरत होती है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातों जो नहीं होती। तो ये बात गुलजार साहब ने यूं ही नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि किताबों पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ बता सकती हैं और सवाल पूछने पर विवश कर सकती हैं। ऐसी पहली किताब हम अभी लेना चाहते हैं और हाथ में ही है मेरे। आप इसको देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं इसका कवर पेज आपको बता सकती हूँ कैसा है। इसका कवर पेज जो है रेत समाधि नाम की किताब है और गीतांजलि श्री ने इसे लिखा है। ये जो कवर पेज अभी मेरे हाथ में है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि रेत की एक टीला बना है, उसमें एक बुज़ुर्ग औरत जो है हाथ में डंडी लेके खड़ी है और जो पंछी है वो उड़ रहा है, उसे उड़ा रही है वो औरत। तो रेत की समाधि जो इस किताब का नाम है वो पूरी तरह सामने आ जाता है इस छोटे से कवर पेज से ही। फिलहाल ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है बल्कि उम्र, सीमाओं, पहचान और आज़ादी की नई परिभाषा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी लेखिका हर बात को सीधे नहीं कहती बल्कि पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। यदि प्रेमचंद ने भारत के गांव लिखे हैं, निर्मला वर्मा ने अकेलापन लिखा है, तो गीतांजलि श्री ने सीमाएं लिखी हैं। लेकिन ये सीमा केवल भारत पाकिस्तान की नहीं है, ये उम्र की सीमा है, स्त्री की सीमा है, भाषा की सीमा है और सोच की सीमा है। जी हाँ, कभी कभी सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं अपने भीतर होती है और यही बात इस जो है किताब में बोली गई है। और साथ ही ये कहा जाए कि एक पूरा सेगमेंट तैयार किया है हर उम्र की औरतों के, उसमें उनकी सीमाओं में देखा गया है और कितना स्ट्रगल है हर एज में। 80 की एक अम्मा हैं जो अकेली पड़ गई हैं राह में, उनके

जो जीवन साथी है वो उनका साथ छोड़ गए हैं, उनके लिए एक जीवन के नए टास्क हैं। साथ ही एक ट्रांसजेंडर है जिसने नई ऊंचाइयां तय करने की मन में ठानी है, लेकिन अपने आप के भीतर की जो लड़ाइयां हैं उनसे वो निकल नहीं पा रही हैं। और साथ ही अम्मा की बिटिया है। सो तीन तीन औरतें हैं और उनका एक अजीब सा ताना बाना है जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इस किताब के बारे में यही कहूँगी कि

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं म्यूज़िक कैफ़े एफएम रेनबो पर। नमिता के साथ हैं आप और इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन किताबों की जिन्हें खोलकर कुछ लोगों को नींद भी आ जाती है और कुछ लोग जो होते हैं वो अंदर से जाग जाते हैं, यानी कि उनकी सोचने की, विचार करने की क्षमता जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। आप उनमें से कौन से वाले हैं ये आप डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल कहानियाँ सुनना तो सभी को अच्छा लगता है कि नहीं? तो जिस कहानी की हमने पहले बात की, गीतांजलि श्री की लिखी हुई ये रेत समाधि जो नॉवेल है उसकी बात की, जो 2018 में प्रकाशित हुई थी और राजकमल प्रकाशन के तहत हुई थी,

साथ ही अगली जो किताब है बनारस टॉकीज, इसके लेखक हैं सत्यव्यास जी। प्रकाशन का समय है 2015। जी हाँ, कभी आपने महसूस किया है कि जब भी नॉवेल्स की बात होती है तो अक्सर ही हम पुरानी वाली नॉवेल्स उठाते हैं और बहुत जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनकी नॉवेल्स पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन नए ज़माने के कुछ साहित्यकारों के नाम भी इस लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं। लेकिन उसी में से एक जो टुकड़ा है वो हम लेकर हाजिर हो गए हैं और इसमें है बनारस टॉकीज, सत्यव्यास की लिखी हुई। ये नॉवेल जो है कॉलेज, दोस्ती, सपने, प्यार और बनारस की गलियों की खुशबू, ये सब लेकर आई है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि लेखक साधारण लोगों की असाधारण कहानियाँ लिखते हैं। यदि कोई पूछे युवा भारत कैसा सोचता है तो ये उपन्यास उत्तर देता है। ये प्रेम कहानी नहीं है, ये फ्रेंडशिप की साइकोलॉजी है, यानी दोस्ती हमारे व्यक्तित्व को कैसे गढ़ती है और कैसे हमें दिशा निर्देशन देती जाती है। ये सब बातें इस कहानी को पढ़कर आपको ज़रूर समझ में आएंगी। और अगर आपने बहुत सी दोस्तियां देखी हैं, दोस्ती में उतार चढ़ाव देखे हैं, सच्ची वाली दोस्ती आपके पास भी है तो ज़रूर ये किताब पढ़ें, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसे ही टर्न से निकलती है और ऐसी ही नई एक साइकोलॉजी बनाती है आपके जहन में और कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपके दोस्त भी आपको नहीं दे पाए हों वो इस किताब के ज़रिए आपको मिल जाती है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए होता है। यही संदेश देती है बनारस टॉकीज सत्यव्यास की। ज़रूर पढ़ें और आगे बढ़ते हैं इसी सेगमेंट में। अगली एक और नॉवेल के साथ होंगे हाजिर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, म्यूजिक कैफे जारी है और हम कर रहे हैं किताबों की बातचीत। किताबी दुनिया भी अजीब होती है, कई बार हम उसमें घूमते घूमते भूल ही जाते कि हम कौन हैं। और ऐसा ही कुछ है इस किताब के साथ, क्योंकि ये हमें पीछे लेके जाती है। इसका नाम है डार्क हॉर्स। इसका जो कवर पेज है उसमें ब्लैक हॉर्सेस तो ऑब्वियसली बने ही होंगे। दौड़ते हुए हॉर्सेस लगाना घर में, ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है और लोग कहते हैं कि इससे प्रोग्रेस आती है। और उसी को दर्शाती है ये स्टोरी भी, क्योंकि ये स्टोरी नीलोत्पल मृणाल ने लिखी है और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं की कहानी इसमें दी है। लेकिन असल में ये किताब प्रतियोगी परीक्षा से ज़्यादा सपनों, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। एक बात जो दिल में छू जाती है वो ये है कि हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छुपी होती हैं। पूरे भारत में लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन साहित्य ने उनके संघर्ष को बहुत कम लिखा है। और नीलोत्पल मृणाल ने पहली बार ये दिखाया है कि यूपीएससी की तैयारी केवल नौकरी नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन भी है। छोटे शहरों के लोग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बड़े शहरों में आकर स्ट्रगल करते हैं इस पढ़ाई के लिए। भारत के मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा है कि वो कभी ना कभी सरकारी नौकरी में ज़रूर लगेंगे। समाजशास्त्री इसे एस्पिरेशनल इंडिया का उपन्यास मानते हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर छत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी।

सो जैसा कि हमने डार्क हॉर्स में बताया कि यूपीएससी की तैयारी वगैरह करने में कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव से आकर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब बातें डार्क हॉर्स जो किताब है उसमें कही है नीलोत्पल मृणाल ने। उस पर भी कई सारी ऐसी मूवीज़ भी आपने देखी होगी, सुपर 30 उसमें से एक है और शादी में ज़रूर आना, ये भी राजकुमार राव की एक मूवी थी जो कि इसी पर आधारित थी। हालाँकि बदला लेने के लिए राजकुमार राव जो हैं ये एग्ज़ाम्स को निकालते हैं और उसका वे ही डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो इस तरीके की कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में या लोगों के उन सपनों के बारे में बात करती हैं जो लोग देखते हैं सरकारी नौकरी को लेकर। मुझे पहचानो, जी हाँ, ये एक अगली किताब है, दिव्य प्रकाश दुबे जी ने 2015 में लिखी है, आज की पीढ़ी की बातें हैं और मुझे पहचानो जैसा कि किताब का नाम है बिल्कुल वैसी ही किताब है। अपने आप को पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में सक्सेस की जो भी आपकी परिभाषा है उस तक पहुंच सकते हैं। खुशी में ही अगर आपको सक्सेस की परिभाषा में लगता है कि सिर्फ खुश रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले अपने आप को पहचानें। आज की पीढ़ी रिश्ते, अकेलापन और खुद को खोजने की कहानी, ये है मुझे पहचानो के अंदर। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने बेहद अच्छी सरल भाषा में ये किताब लिखी है, लेकिन विचार बेहद गहरे हैं। साहित्य का काम है सत्य बताना या सत्य का अनुभव कराना, और शायद यही वजह है कि ये किताब एक अच्छी किताबों में गिनी जा सकती है। खत्म होने के बाद किताब खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है आपके भीतर। आपके अंदर कई सारे सवाल भी आते हैं और आप अपने आप में कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर करते हैं। दुनिया आपको पहचानने से पहले ज़रूरी है, या आप दुनिया को पहचाने उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद को पहचान लें, ताकि आप अपनी लाइफ को अपनी दिशा अनुसार बदल सकें। ऐसी बेहतरीन किताबों के बारे में हम हर बार ही चर्चा करते हैं और हर बार ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किताबें आपकी दुनिया में आज भी जगह बनाई हुई हैं। अगर नहीं बनाई हैं तो फिल्मों के माध्यम से ये ज़रूर जगह बनाएंगी, इसी की आशा करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, म्यूज़िक कैफ़े में हिट एंड हॉट होगा इसके 10 मिनट बाद, और आपसे गुजारिश है आपकी पसंद का गाना जल्दी से लिख कर भेज दीजिए 8657661071 पर।

दोस्तों, किताबें कभी शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो अपने समय का इतिहास भी होती हैं और भविष्य का संकेत भी। आज का हिंदी उपन्यास केवल प्रेम कहानी नहीं लिखता, वो माइग्रेशन लिखता है, अकेलापन लिखता है, मानसिक स्वास्थ्य लिखता है और पहचान की राजनीति लिखता है। वो स्त्री की चुप्पी लिखता है और सबसे बड़ी बात, वो पाठक को असहज नहीं बनाता, क्योंकि अच्छा साहित्य कभी आपको आराम नहीं देता, वो आपको बदल देता है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे नमिता और आपका अपना प्रोग्राम यानी कि हिट एंड हॉट शुरू हो चुका है और आप सभी की रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी है। कुछ रिक्वेस्ट मैंने प्ले करने के लिए लगा भी दी है, पर रिक्वेस्ट से पहले एक रैपिड फायर जैसा राउंड बिल्कुल फटाफट आपको आंसर देना है, जल्दी से लिख के भेजना है। सवाल ये है कि मैं छोटी सी लाइन बोलूँगी और उस पर आधारित फिल्म का नाम आपको बताना है। कोई स्टोरी लाइन नहीं है, जस्ट अ लाइन। एक लाइन में 3 घंटे की स्टोरी लेकर आ रही हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, तो शुरू हो जाइए। गलत पते पर पहुँचा टिफिन 2 अनजान लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, कौन सी मूवी है ये? बिल्कुल लिख भेजिए कहाँ, 8657661071 पर। एक बार फिर सवाल पूछ लेती हूँ कि गलत पते पर पहुँचा टिफिन 2 अनजान लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, कौन सी फिल्म है? आपको जल्दी से लिखकर भेजना है हमारे नंबर पर। फिलहाल पहला वाला गाना प्रदीप जी की पसंद पर आ रहा है आप सबके बीच। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।

ये गाना आप सुन रहे थे विनोद मकवाना दहीसर से, जो हमें लिखते हैं उनकी पसंद पर। और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लिसनर्स जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें आप सुन रहे हैं इटन आउट प्रोग्राम आरजे नमिता के साथ। यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लिसनर्स हैं उनके नाम एक बार बोलना चाहूँगी और उसके बाद जो है सवाल का सही जवाब क्या था वो बताऊँगी। फिलहाल हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बाबा जी दादर से दीपा पाटिल जी, अशोक पाटिल जी, रजनीकांत पाटिल जी, स्वर्णा जी, अमित भगत जी, फिरोज जी, पंकज जी, शुभदा जी, दिग्दर्शन और कविता जी, प्रमोद जी, अभिजीत जी, अरुणा खार जी से हमें लिखती हैं, साथ ही मिंटू जी हैं उनके साथ हैं, उनके साथ ही पंजाब से पिंकी लवली आरती अरोरा जी, मैनन जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपा पालकर जी, संदीप कुमार जी, नितिन स्वामी, राकेश माथुर जी, अजय साकरे जी इंदौर से और राजेंद्र परमार जी, मुकुंद जी पूना से, साथ ही राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नांदेड़ से, विजेंद्र जी अकोला से जुड़े हैं, लालगिरी गोस्वामी जी, मीरा सिंह जी, स्वर्णा सिंह, राजदीप, प्रदीप, गणेश जी, सुनील गायकवाड़ जी और उनके साथ ही बहुत सारे और भी लोग हैं। अगर आपके नाम छूट गए हैं तो बिल्कुल हमें बिल्कुल पिंग कीजिए और हम अगले सेगमेंट में आपका नाम ज़रूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो बताती हूँ कि गलत पते पर पहुँचा टिफ़िन दो अनजान लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। कौन सी मूवी है ये? ये मूवी है द लंच बॉक्स। बहुत सारे सही जवाब आए लेकिन थोड़ी देर से आए राकेश माथुर जी और दीपा जी एक साथ मुझे जवाब देते हैं लेकिन कुछ सेकंड पीछे हैं राकेश माथुर जी। दीपा जी ने बाजी जीत ली है तो सबसे पहला और सही जवाब जो है वो दीपा पालकर जी ने लिखा है और किसी ने हमें लिख के भी दिया है जवाब ये कि टिफ़िन बॉक्स उसका नाम है, तो ये गलत जवाब होगा। बाकी काफ़ी करीब आ गए थे आप और बहुत सारे हमारे लिसनर्स कोशिश करते हैं लेकिन देरी की वजह से रह जाते हैं। अगला सवाल, फिर एक लाइन और ये लाइन तो इतनी डिस्टर्बिंग है, मुझे यकीन है आपको इसमें हिंट की ज़रूरत ज़रूर होगी। तीन दोस्त ज़िंदगी बदल देने वाली रोड ट्रिप पर निकलते हैं। जी हाँ, इस लाइन में ही कहीं इस फिल्म की शुरुआत का नाम है। हिंट मैं अभी से ही दे देती हूँ, तीन दोस्त ज़िंदगी बदल देने वाली रोड ट्रिप पर निकलते हैं। जल्दी से लिख भेजिए 8657661071। फिलहाल दीपा जी की पसंद का ये वाला गाना आ रहा है इस वक्त FM रेनबो पर।

दोस्तों, हमारे सवाल का जवाब भी आ चुका है, लेकिन किसने जीती है बाजी बताएंगे कुछ ही देर बाद। और फिलहाल आपके पसंद के गाने जो चल रहे हैं उसमें बता दें, ये जो गाना है इसे पसंद किया है विजया मोहबिया खंडवा से, साथ ही कविता सोनू मोनू सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू ने। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, मैं हूं आरजे नमिता। हिट एंड हॉट का सफर फिर से शुरू हो चुका है और अब हम वो सवाल जो आपसे पूछ रहे थे उसका जवाब ज़रूर देंगे। हमने पूछा था आपसे कि तीन दोस्त जिंदगी बदल देने वाली रोड ट्रिप पर निकलते हैं, कौन सी फिल्म है ये? तो हिंट के रूप में हमने आपको ये भी बोला था कि इन्हीं लाइन्स में फिल्म के शुरुआती नाम का जिक्र है, तो सही फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और सबसे पहले जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं मुकेश वालिया जी देहरादून से। उनकी पसंद का गाना बिल्कुल रेडी है और उसके बाद शुभदा जी, कल्पना जी उल्लासनगर से हमें लिखती हैं और इन दोनों के ही एक पसंद है और क्यों ना हो, क्योंकि आज राजेश खन्ना जी को ज़रूर याद कर रहे हैं हम सब, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और आज ही के दिन हमने एक ऐसा सितारा खो दिया था जो सालों साल से हमें इंटरटेन करता आ रहा है, दिशा निर्देश करता आ रहा है। बहुत से उनके गाने, बहुत सारी उनकी फिल्में ऐसी हुई हैं जो आज भी यंग जनरेशन को भी प्रेरित कर रही है और गाने पर मजबूर कर रही है। उनकी

ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ लोग फिर से आते हैं और हम आपसे विदा लेने से पहले बता दें, ये वादा कर लें कि फिर से हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल ये गाना जो आपने अभी सुना, ये आपने सुना सुभदा जी, कल्पना जी उल्लासनगर से इनको पसंद करने वाली थी। अब स्वरण सिंह जी की पसंद का गाना आ रहा है, लालगिरी गोस्वामी जी ने भी इन्हें पसंद किया है और साथ ही सोमा जी ने इन्हें पसंद किया है। इन तीनों की ही फरमाइश पे अगला वाला गाना आपको पेश कर रही हूँ और जाते जाते यही कहूँगी, काटेंगे तो वक्त है, जिएंगे तो ज़िंदगी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। मुझे यानी नमिता को दीजिए इजाज़त। आशा है आप सभी को आज के प्रोग्राम को सुनकर अच्छा लगा होगा। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया 8657661071 पर डाल दें। बने रहें यहाँ एफएम रेनबो पर। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, सायोनारा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण

0: विवरण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश

असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोते हो, आपली लाडकी आकाशवाणी 99 वर्ष पूर्ण करून 100व्या वर्षात पदार्पण करते
2: आणि या निमित्ताने 23 जुलैला आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे एक विशेष सोहळा,
1: उत्सव नवचैतन्याचा। वर्षा भावे यांनी संगीतबद्ध केलेली बालगाणी सादर करतील कलांगणचे छोटे कलाकार।
2: पाऊस आणि प्रेमाची काव्य मैफिल रंगवतील मंदार चोळकर, यामिनी दळवी आणि रेशमा कारखालीस।
1: मल्हार स्वरांची बरसात करतील गायिका अंकिता जोशी, बासरीवादक निनाद मुळावकर आणि संतूर वादक मंगेश जगताप।
2: गुरुवार दिनांक 23 जुलैला सायंकाळी 5 वाजता
1: स्थळ आहे रवींद्र नाट्य मंदिर प्रभादेवी।
2: प्रवेश निःशुल्क।
1: सर्व रसिक श्रोत्यांना

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलो हर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। 5:03 हो रहे हैं। मैं शिव कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का नाम है लव यू जिंदगी और मौसम के हिसाब से कार्यक्रम का आगाज भी अदनान सामी की आवाज़ में इसी गीत के साथ करते हैं।

0: लकीली की आवाज में आपने सुना गोरी तेरी आंखें। 5:12 और 7 सेकंड हो चुके हैं। दिन साल सब कुछ बढ़ता जा रहा है और जिंदगी में अगर मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी ना किसी आपाधापी में पड़े होते हैं। और एक चीज़ जो मैंने बहुत बार प्रोग्राम में कहा है, जो घर कर गई है लोगों में, वो है अकेलापन। और हर इंसान अकेलापन से जूझने के अलग अलग तरीके से कोशिश करता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीके होते थे, होते हैं और हमेशा रहेंगे, उससे दूर भागता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि कामकाजी जिंदगी में सुबह अपना बायोमेट्रिक लगाने से लेकर शाम को निकलने तक जाने का सबका समय निर्धारित, आने का समय निर्धारित नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि यार अगर कभी कुछ पल मिल जाए तो अपने आप के साथ बिता लूँ, कुछ आराम कर लूँ, कुछ नींद पूरी कर लूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो असाइनमेंट लोगों का हो चुका है वो है कि भाई जितने भी OTT वगैरह के बाकी हैं, कोटा मुझे पूरा करना है। इन सभी कवायद में जिन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा आसानी होती थी, आपकी ज़िंदगी आसान होती थी, आपके पल अच्छे होते थे, आपके करीबी दोस्त छूट गए। तो जब कोई दोस्त मिलना चाहता है, आना जाना चाहता है, मैं बार बार ये बात रिपीट हमेशा करता हूँ कुछ महीनों के बाद याद दिलाने के लिए, जो लोगों ने सुना होगा उस दौरान दोबारा सुनेंगे, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कोर्स की तरह, कि आपको लगता है कि अरे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कहाँ कौन किससे मिलेगा, निकल के आना जाना, गाड़ी ट्रैवल, बहुत कुछ सोचते हैं और नहीं मिलते हैं। राधव क्या करते हैं, अपने आप आराम से घर पे बैठकर पूरी की पूरी सीरीज चाट जाते हैं, 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 एपिसोड 4 5 6 7। लोगों ने सोशलाइजेशन, आपके नज़दीकी रिश्तेदार कुछ बुलाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते, दोस्तों से नहीं मिल पाते, आप खुद अपने आप को लोगों से काट रहे हैं, जाते नहीं, आते नहीं, मिलते नहीं, और फिर शिकायत होती है अकेलेपन की। आप कहीं आइए जाइएगा नहीं तो कौन आने वाला है, नो वन इज चेकिंग ऑन मी, क्यों करेगा भाई साहब। आपको अपने आप से एक चीज़ अच्छी बात है कि लोगों ने कहा है कि मैं अगले कड़ी में बात करूँगा प्रायोरिटी की, प्रायोरिटाइज करना अपने आप को कितना ज़रूरी है, लेकिन इस चक्कर में सबको अनदेखा कर दीजिए और सिर्फ अपनी प्रायोरिटी के चक्कर में लगे रहिए, मेरा पसंद, मेरे मूड, मेरी बातें, कैसे होगा, क्या होगा। तो अगला भी वही करने वाला है और फिर दिक्कतें वही आने वाली है। अरिजीत सिंह, ज्योति नारायण की आवाज में सुनाता हूँ ये गाना, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: PM जय, अब गरीबों की जय बन गई है।

इस गाने के बाद मैं लकी ली का गाना प्ले करने जा रहा था, लेकिन जब देखता हूँ खिड़की से बाहर झांककर और मौसम बदलता है तो मैं भी गाने को बदल देता हूँ और अगला गीत मैं आपको सुनाऊंगा जैकपॉट का कभी जो बादल बरसे। लेकिन उसके पहले जो मैं बात कह गया था, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, ट्रैवल करते करते प्रोग्राम सुन रहे हैं या जिन लोगों को भी शनिवार को छुट्टी होती है और आराम से बैठकर सुन रहे हैं और सैटरडे नाइट का प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ कि अक्वेंटेंसेस और एकदम खास दोस्त, वो जो गाना मैंने लगाया था ना यार, उसमें कहा था ना जिसे हर बात कही जा सके, बहुत कम लोग दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसके बीच में भी अगर आप छांटेंगे तो लगातार जिसके पास आप एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हो, कुछ बात नहीं छुपाते हो और क्यों कि उन पे पूरा भरोसा है, उसके पास उतनी मेजॉरिटी होती है कौन सी बात अपने पास रखनी है और कौन सी यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ आप चैन से रह सकते हो और कंफर्टेबल फील कर सकते हो कि यहाँ बिना जजमेंट लिए कोई आपको, समझ रहे ना, कोई भी इंसान आपको जज करने की कोशिश नहीं कर रहा है और आप जैसे हैं वैसे आपको चाहता है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, उन्हें संभाल के रखिए और जब भी मौका मिले उन्हें, भैया नाराजगी और राजगी दोस्ती सब कुछ होते रहता है लेकिन कुछ लोग होते ज़िंदगी भर के लिए होते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिएगा, वो छोटी छोटी बातों को लेके यहाँ वहाँ नहीं हो जाते। प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम लंगोटी दोस्त होते हैं ना, किसी भी हाल में हो, चाहे आपने गाली भी दी हो तब भी आके आपसे डबल गाली दे के झगड़ा करेगा लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। तो जो नहीं छोड़ने वाले दोस्त होते हैं ना, उन्हें एकदम पकड़ के रखिए और OTT से बेहतर आपको एंटरटेन भी कर सकते हैं, अच्छा समय भी जा सकता है। और दो खास दोस्त जब बैठते हैं बिना बात किए भी बात हो जाती है, जो बाकी लोगों के साथ पूरा एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे।

5:37 हो चुके हैं, 107.1 मेगाहर्ट्ज़ यहीं पर होता है। मोर बजाना, लेस पकाना, सुनाते हैं गाने पे गाना। अगली पेशकश है अदनान सामी अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म युवा का गीत बादल जो छाई। एक अलग तरह की गायकी है, बहुत ही अलग गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है इस मौसम के अनुरूप। और जो हमने आपसे कहा कि प्रायोरिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने खास खास खास दोस्तों को भूल जाना और मतलब के साथियों के साथ ही रहना आपको ज़्यादा दिन लंबा नहीं ले जाएगा। और इसीलिए जब आजकल लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, आप देखते हैं पैसे वाले हैं, स्ट्रेस में हैं, कोई पैसे की खोज में, वो भी स्ट्रेस में है, किसी के चेहरे पे सुकून नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। अलग अलग ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये क्लासेस अटेंड करेंगे, वो अटेंड करेंगे, क्या कहते हैं ना, हेल्दी लिविंग और अच्छे अच्छे लाइफ कोच भी आ चुके हैं, सभी लोग ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल एकदम तरीके से बता रहे हैं, उसको भी एकदम कॉर्पोरेट अंदाज में बता रहे हैं। लेकिन आपका दिल जानता है आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है। जानने के बावजूद अनजान बनकर काम करना और किसी को भी ध्यान नहीं देना अपने अलावा, इसीलिए थोड़ा सा काउच पोटैटो बनने की कोशिश कम कीजिए, थोड़े से उठ जाइए, निकल आइए, दो कदम आगे बढ़िए, किसी को बुलाइए, साथ में बैठिए, मोबाइल को बाजू में रखिए और बातें कीजिए। ये क्या ज़माना हो गया, फ़ोन भी हाथ रख के हाथ में रखकर बातें होती है, फिर कोई किसी को क्या दिल से कहेगा, उसको पता है कि भाई बात कर रहा हूँ, फ़ोन तो हाथ में है तो फ़ोन बाजू में भी रखता नहीं है, तो उसको पता है कि जब 100% अटेंशन नहीं मिल रहा है तो सुनेगा क्या, इलाज करेगा क्या, इसीलिए दोनों तरफ से बात नहीं बनती है।

जब भी ये गीत मैं प्ले करता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आते ज़रूर हैं, और कितने सालों के इस गीत को, लेकिन आज भी उसकी महक और उसकी यादें तरोताज़ा हैं सबके मन में। और इस गाने को लिखने वाले साहब जो हमसे मिले थे एंड उन्होंने पूरी कहानी बताई गाने के पिक्चराइजेशन से लेके गुलशन कुमार जी से इन्वॉल्वमेंट से लेकर, और उस ज़माने में एल्बम कितना बड़ा हिट हुआ था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आज के ज़माने में बहुत कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह गाने सुनने के, उस ज़माने जब लोग कैसेट प्लेयर खरीदते थे, जब सीडी का आगाज़ भी नहीं हुआ था, नया नया हुआ था, उस ज़माने में जब कैसेट्स बिकते थे, जाते थे लोग गाने सुनते थे, तो एक मेहनत लगती थी उसको प्रोक्योर करने में, लाने बजाने में, और एक अलग ही टाइप का बिजनेस नज़र आता था, तो मालूम पड़ जाता था ओवरऑल मार्केट में कि कौन सा गाना हिट है। सिर्फ नंबर्स के सहारे नहीं, वो गीत हर गली नुक्कड़ घर बाहर हर जगह बजा करता था। जाते जाते 5:52:11 हो चुके हैं, हम तो कर रहे थे बातें कि किस तरह से आप अपना समय ज़ाया कर देते लेकिन अपने खास लोगों को याद नहीं करते हैं। 6 से 7 अंदाजे बयां के दौरान बताऊंगा कि प्रायोरिटीज़ में क्या क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हम उसे नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, और इंसानियत भी जा रही है लेकिन उसके बावजूद हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं है। तरक्की बहुत कर रहे हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन इंसानियत में कम कम होता जा रहा है। आपको हम अब सुनवाते हैं शंकर महादेवन का वो गीत जो आप बार बार सोचते हैं इन्होंने कैसे रिकॉर्ड किया होगा, ब्रेथलेस।

जब उस दौर की बात चल पड़ी थी, एक और कलाकार जिनका नाम काफी समय के लिए हुआ था, शोहरत कुछ सालों के लिए थी लेकिन बहुत जोरदार थी, तुम तो ठहरे परदेसी वाले अल्ताफ राजा, और उनका साथ ही साथ एक और एल्बम था दर्द भरा, लेकिन उसका एक अलग अंदाज की गायकी थी और वो गीत मैं आपको आता सुना के जरूर जाऊंगा इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले। वो था पहले तो कभी कभी गम था, अभी तो हर पल तेरी याद सताती, अल्ताफ राजा की आवाज में। और 6 बजे होंगे समाचार, फिर हम दोबारा 6:15 से आपके सामने पेश खिदमत करेंगे अंदाजे बयां।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz Musically yours.
1: वेलकम बैक साथियों, 6:16 और 4 सेकंड हो चुके हैं 107.1 MHz. अपने साथी शिव कुमार सिंह के साथ आप लोग सुन रहे हैं वक्त हो चला कार्यक्रम अंदाज़े बयां का. खास तौर से इसमें हम आपको गजलें, कवाली, सूफियाना किस्म के गीत पेश करते हैं, लेकिन अलग अलग अंदाज के

लूंगा, जो हर एक इंसान फॉलो कर सकता है, हर एक इंसान उसे गुजरता है, उसके सामने चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तय करता है उसे अपना कैरेक्टर कैसे रखना है, खासतौर से अपने माँ बाप के प्रति।

बाद मैंने शुरुआत की थी कि जिंदगी में जब आपके कीमती दोस्त होते हैं उन्हें अपने पास रखिए, वो आपका एक ट्रूप है, क्या कहते हैं ना, आपकी गैंग होती है। वो गैंग मेंबर्स जो होते हैं ना, आपको हर दिन नज़र नहीं आएंगे, खास खास जगहों पे भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब भी अगर आप उस तरफ करेंगे, अगर आपको उनकी ज़रूरत होगी, जिसे आप 2 AM 4 AM फ्रेंड्स कहते हैं, वो नज़र आएंगे। वो होती है गैंग। हर इंसान का सो ट्रूप होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी निजी सेना है। और जब कभी कोई ऐसी महफिल होती है जहाँ बहुत सारे लोगों को आप इनवाइट करते हैं और अचानक में देखते हैं कि यार वो 2-3 खास लोगों से आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से लेकर हर जगह, तो जो नए नवेले दोस्त बने रहते हैं बड़े चौंक जाते हैं, कौन है यार वो जिसको इतनी तवज्जो दे रहे हो। फिर उनको धीरे धीरे मालूम पड़ता है भाई साहब ये इनकी लाइफ लाइन है। तो हर इंसान के पास लाइफ लाइन होती है, उस लाइफ लाइन का इस्तेमाल सही जगह वो करता भी है, लेकिन आज की आपाधापी में भूल चुका है। लाइफ लाइन कहते ना कि धूल खा रही है, इसलिए धूल को झाड़िए, उन्हें करीब बुलाइए, और उसके बाद हम बताएंगे इस गीत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे आप नज़रअंदाज आजकल कर रहे हैं वो क्या है। फिलहाल आपको सुनाता हूँ सुखविंदर जी के पहले जगजीत सिंह साहब को सुनाता हूँ, क्योंकि गीत ही ऐसा है, कैसे कैसे हाथ से। 107.1 मेगाहर्ट्ज़, मैं आपका दोस्त शिव कुमार लेकर पेश हूँ कार्यक्रम अंदाज़े बयां।

अगली गजल जो सुनाने जा रहा हूँ, रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में तेरी फरियाद, नए तरीके से नए वर्जन में है और बहुत ही दिल को छू लेने वाला गीत है दोस्तों ये। और हम इसी बहाने बात कर रहे थे कि किस तरीके से जब आप लोग धीरे धीरे, हम भूल जाते हैं कि हमारी भी उस उम्र में जो अगर माँ बाप ने हमारा साथ दिया था, बहुत कुछ हम नहीं कर पाते थे, वो हमको बहुत सह लेते थे, हमारे नखरे उठाते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन अब जब हमको समझ आ गई है और कोई चीज़ वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, जहाँ उनको आपकी ज़रूरत लगती है, मदद लगती है, तो वो करने के दौरान हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और बहुत सारे घरों में एक फर्नीचर का हिस्सा, टुकड़ा फर्नीचर का एक हिस्सा समझ के उनको रख दिया जाता है।

चाहे उनकी आदतें, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स मतलब उतने मायने नहीं रखते और उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, वो सिर्फ चाहते हैं आपका थोड़ा सा समय। और जो 5-10 मिनट यानी कि वो समय जो आपके लिए एकदम नगण्य है कि नहीं भी यहाँ वहाँ चले जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने 5 मिनट कम स्क्रोलिंग कर लिया और उनसे बात कर लिया, उनसे कुछ पूछ लिया, तो उनका दिन बन जाता है। वो इसी में खुश है कि हमारी पूछ अब भी है, लेकिन वो पूछ भी उन्हें नसीब नहीं होती है। अंदर अंदर कुड़न सी होने लगती है कि जिसको हमने इतना नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ उनके लिए किया, सबको उम्मीद रहती है ऐसा नहीं होगा, फिर भी हो जाता है। फिर उनको लगता है कहाँ कमी रह गई, लेकिन वो मन महसूस के रह जाते हैं, उसके बावजूद शिकायत करेंगे नहीं। कभी कभार यहाँ वहाँ आपस में दोस्तों से, उनके भी दोस्त होते हैं, उनके भी उम्र के हिसाब से दोस्त होते हैं, बिल्डिंग में कहीं भी जाते आते हैं, शाम को साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अक्सर शेयर कम करते हैं, शिकायतें भी कम करते हैं, या कुछ शिकायतें भी बहुत करते हैं। लेकिन कितनी सारी चीज़ें जब आपको कहते ना कि एकदम बचपन वाली उम्र और वो उम्र लगभग एक सी हो जाती है, अलग अलग जिद होती है उनकी, तो उन्हें उनकी पूछ और उनका अधिकार मिलना चाहिए कोई ना कोई काम करने के लिए, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं, उनको लगना चाहिए कि आज भी मेरे हाथ में बहुत कुछ है। वो विश्वास दोबारा उनको दिलाना होगा, वो आप दिला सकते हैं अपने स्वभाव से। खुद मैं जब लगता था कि बात कोई एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आखिरी पीढ़ी है जिन्हें आज भी स्मार्टफोन से इस्तेमाल करने नहीं आता, वो मिस्ड कॉल भी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे कहेंगे, चाहे टीवी चालू करना पाए, बार बार आप बताएंगे, बार बार भूलेंगे, आपको दोबारा बताना पड़ेगा, लेकिन आप इन चीज़ों में इरिटेट हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, इंसानी स्वभाव है, हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब आप सोचेंगे कि यार मैं उस हालात में था, जब आप फिर बाप बनते हैं, माँ बनते हैं, और जब आप फिर पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते, तब रियलाइज़ करते कि यार उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी। आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है जो हमें हेल्प कर देती बहुत सारी चीज़ों में, उस ज़माने बिना टेक्नोलॉजी के भी वो ऐसे कैसे मैनेज कर लिया करते थे। सोचिएगा इस बात पर, गौर ज़रूर कीजिएगा। तब तक जब तक आप ये सोचते हैं, गाना भी उसी तरीके का सुना रहा हूँ, तेरी फरियाद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: अंदाजे बयां कार्यक्रम के अंत में दो गीत में सुना के जाना चाहता हूँ. अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ जगदीश सिंह साहब की आवाज में और दिखाई दिए यूं बाजार फिल्म से लता मंगेशकर का गीत की आवाज में गाना. जाते थे वही बात दोस्तों जो मैंने कही है, और इसे एक कहते ना कि एक रिचुअल के तौर पे मत कीजिए, या रिचुअल के तौर पे कीजिए लेकिन आप इसको एक फॉर्मेलिटी मत समझिएगा कि ठीक है कहाँ है तो अटपटे मन से करना है. आपके फेस एक्सप्रेशंस नज़र आ जाते हैं, और जब आप अपने माँ को कैसा ट्रीट कर रहे हैं उस वक्त भूलिएगा नहीं आपके बच्चे भी आपको देख रहे होते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. जो ट्रीटमेंट दिया है अक्सर वही मिलने की पूरी गुंजाइश होती है, एक्सेप्ट इन रेयर केसेस. इसलिए ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, और कितना भी आउट ऑफ वे जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो ऋण आप चुकता नहीं कर सकते. जो भी करेंगे कम है, लेकिन नहीं करेंगे तो खैर आप खुद समझदार हैं.

वेलकम बैक दोस्तों, 7:16:42 हो चुके हैं। आप सभी लोगों का मैं हम तुम में तहे दिल से कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के पहले ही, जैसे कि ये कार्यक्रम है, इतनी ज़्यादा फरमाइशें आती हैं और हम हर बार, जैसे कि मैं कहता हूं, अपने कार्यक्रम में नए नए लोगों की फरमाइश को इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो जितने भी हमारे पुराने सुनने वाले, ये ना समझे कि भाई उनकी फरमाइश पर गौर नहीं किया जा रहा है। 8657661079।

अगली फरमाइश आई है वलसाड़ गुजरात से, पूर्वी उनका नाम है, और वो सुनना चाहती हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडीज का गीत। सजनी रे 8657661071 8657661071। बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता हूं ताकि गाने कम ना हो जाए, फरमाइशें कम ना हो जाए। पूर्वी ये गाना आपके लिए आ रहा है।

अगली फरमाइश आई है पुणे से सुनील गायकवाड़, जिन्हें भाऊ नाम से भी कहा जाता है। वो खास तौर से आज सुपरस्टार राज खन्ना जी की पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में चाहते थे कि उनकी याद में एक कोई गीत मैं प्ले करूं। तो उनकी जो इमेज थी, एक सॉफ्ट रोमांटिक सुपरस्टार, और वो जो एकदम अपने चरम पर थे उस वक्त, एक जो गाना था मेरे जीवन साथी फिल्म का, वो मेरे दिल के चैन में जरूर सुनवाऊंगा। और उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़, ये सभी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो सुनील जी, आप ये भी कहते हैं कि हम रिटायर्ड होने के बाद और ज़्यादा कार्यक्रम को सुनने लगे, तो हमारी भी कभी कभी फरमाइश आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल, देखिए आपने भेजा और फरमाइश आपके बिल्कुल प्ले किए देते हैं, और ये गीत खास आपके लिए और आपके परिवार के लिए।

107.1 मेगाहर्ट्ज़, इकलौता चैनल जहाँ पर होता है मोर बजाना लेस पकाना। कहाँ कहाँ से आप सैटरडे इवनिंग नाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एक चैनल है जो लगातार आपको गीत सुनाई जा रहा है बिना किसी लंबे चौड़े कमर्शियल ब्रेक के। हम अनाउंस करते हैं और सुनाते हैं, वरना जैसे कि मैं कहता

हूँ, अनाउंसमेंट होती वीटी में और आप पहुंच जाते बैंड्रा, गाना पता नहीं कहाँ खो जाता बाकी चैनलों में। फिर हेल, अगला जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट रोमांटिक मौसम के हिसाब से, अदनान सामी की आवाज़ में लाइफ इन मेट्रो फिल्म का गीत बातें कुछ अनकही सी होने लगी, और इस गाने की फरमाइश की है दिशा ने मध्य प्रदेश विदिशा से। वाह, दिशा फ्रॉम विदिशा, मध्य प्रदेश में उनकी फरमाइश है। और साथ ही साथ हमारे एक और सुनने वाले जो कहते हैं कि बस अमरावती से पंकज मोड़ जी है, अगला जो भी गीत लगेगा उस फरमाइश में हमको भी शामिल कर लीजिए। तो पंकज मोड़ जी, दिशा के साथ हमने आपको भी इस फरमाइश में शामिल कर लिया। अमरावती से जो है, जो हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं, तो कहते हैं कि अक्सर आप जितने नए लोगों को आने देना चाहते हैं आने दे दीजिए, बस हमारा नाम भी साथ ही में जोड़ लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ये भी बहुत क्यूट सी फरमाइश है।

अगली फरमाइश जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो है राजस्थान से, और ये फरमाइश आई है सुशील यादव, रेणु यादव की। हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर से सुनना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारे इस फरमाइश में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वीरेंद्र घटोल जी जो अकोला से हैं, और साथ ही साथ में अरविंद कुलकर्णी इचलकरण जी से। तो कहते हैं अगर किसी की फरमाइश प्ले हो रही तो हम भी साथ में हैं, अच्छा लगता है। सभी FM रेनबो परिवार के सदस्य हैं, तो हम जितने भी श्रोता हमारे सुनने वाले, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करने की। 7:43:40 हो चुके हैं। अगला गीत आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म रुस्तम का गाना तेरे संग 11।

7:48 हो चुके हैं 107.1 MHz। आप हैं अपने साथी शिव कुमार सिंह के साथ और लगातार बने रह रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। जैसे कि मैं कहता हूं, यहीं पर होता है मोर बजाना लेस पकाना, सुनाते हैं गाने पे गाना। और एक और फरमाइश आई है लेंडोर, अगर आप लोगों ने इस जगह का दौरा नहीं किया है और कभी जाने का मौका मिले जरूर जाइएगा, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। और वहाँ एक कपल छुट्टी मनाने आए हैं और वहाँ बैठकर न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं ये गाना। लेकिन इस गाने के पहले तेरे संग 11 जो हमने सुना है उनकी पसंद का गाना मैं उसके बाद में बजाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और जो हमारी कहते हैं कि लिस्ट में एक नाम जो बचा पड़ा है वो है साक्षी। साक्षी ने हरियाणा रेवाड़ी से फ़ोन किया है एंड मैसेज किया है और वो सुनना चाहती हैं श्रेया घोषाल विशाल भारद्वाज की आवाज़ में ओंकारा फिल्म का ये गीत। साक्षी, आपने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और फाइनली रेवाड़ी हरियाणा में इस गीत को आप सुन सकती हैं हमारे ऐप के जरिए।

7:55 और 1 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ अपने दोस्त शिव कुमार सिंह को दीजिए इजाजत, मेरी आपसे मुलाकात फिर से होगी 29-30 जुलाई के आसपास। फली तैयार हैं अपने म्यूजिक के साथ, जो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हिट एंड नॉट में आप सभी लोगों का कहते ना कि एक अलग ही अंदाज उनका कार्यक्रम पेश करने का, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। जरूर सुनिएगा लगातार 8 से 11 बजे तक। जाते जाते मैं आपको गाना सुनवा के जा रहा हूँ और वो गीत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में लूडो फिल्म का गाना आबाद बर्बाद, और इसकी फरमाइश आई है कर्नाटका से, रायगढ़, कर्नाटक से राजगुरु ने कर्नाटका में बिदाड़ी से फरमाइश की है और ये गाना उनको जा रहा है। हर हाल में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ आपकी सेवा कीजिए। सुनते रहिए FM Rainbow 107.1 MHz।

0: Archbishop of the Eagles over there, Desperado. Don Henley wrote this about his falling in love with Linda Ronstadt. Like I said, the Eagles were Linda Ronstadt's backing band. They recorded with her on three albums before they released their own and changed music forever. We've got the best music ever. Keep sticking around to this radio station. Right now at 8:45, we have the news in Hindi, followed by the news in English at 9 p.m. You're listening to Akashwani's Rainbow Channel on FM 107.1. Keep listening in.
1: Desperado, oh, you ain't getting no young.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
3: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
2: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
4: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
5: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
6: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
7: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
8: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
2: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और

0: कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shade. Chandu Champion, Hindi, for a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity and lasting impact. Actor Kartik Aaryan.
1: Chairman of Jury non-feature film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Pratik.
3: Best Direction, Statue of Unity, Ekta Ka Pratik, Hindi, Citation, for creatively chronicling the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming and engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Unity and National Pride, Director Anand L. Rai. Best Short Film, Hamsafar Marathi. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal and how their loss opens a poignant void, sparking and heartfelt search for memory, identity and emotional connection.
1: Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav, award for best writing on cinema will

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: You want to live it up? You want to enliven it up? Or you want to be lifted up? We do it for you on All India Radio's FM Rainbow Channel on 107.1 MHz. Always live and lively.

0: दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।